अपनी डांसर मिलते यहाँ गंदे सब नशे, फीमेल रैप सूखे तो दुख रहे कंधे, बचने को चालू है धंधे, जाती हूँ चर्च को मैं संडे, सड़कों पे बजती है रात, मंदिर में बजते है घंटे, करते है गानों पे कैप, बंदे हार्ड में वो लगता है ट्रैक, अर जल रहे मर्दों के पुतले, रंडी लोग कमाते बंदों पे मुंह के, 21वीं सदी औरतें भी थूटे, 21वीं सदी भाई औरतें भी झूठे, 17 में घुसते फिर हिजड़ों से लूटे, रहते जुम्बिश में कमरे में सूटकेस, बोले फिर भौंक में दो कुत्ते, हर मौके पे छुपते भाई देश में है भूख, आमिर लोग हकते वो देश में है न्यूज़।